मैं ते परम गति सब तो उच्ची अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु नु मिलन दी जो है वो पाई है किस तरह साध संगत दे द्वारा। सो साध संगत ही वो टंग है, साध संगत ही वो विधि है, साध संगत ही वो रस्ता है जिसके द्वारा प्राणा दा नाथ प्यारा वाहिगुरु मिलता है। अगलिया पंक्तियां दे विच भगत गुरदास जी ये दसन गए कि साध संगत उन्होंने किवें कीती।

0: के नहन में परम गति पा लही। सब तो उच्ची आत्मक अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु दे मिलाप दी पा लही है। भगत रविदास जी दस दहन के मेनू ते सात संगत दे द्वारा ही प्राप्त हुई। बाकी दे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच वी इस आईडिए नू इस तरह सपोर्ट करते हैं, इस दे नाल सहमत हैं, इस दे नाल इकमिक हैं, अते ताकीद करते हैं कि इंसान ए जिज्ञासु ए सीकर जे तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु नू ढूंढना मिलना चाहना है जो कि तेरी जिंदगी का निशाना है तो सात संगत तो अलावा हो दूसरा कोई रस्ता नहीं। महाराज जी बाणी च इस तरह आखते हैं, कहते हैं
1: संत जना के संग मिल बारे
0: कमले इधर उधर ना फिर

बहुत कमाल की गल बाबा जी बाणी चाहते हैं कि जो साधुओं का संग है वह सिर्फ इत्थे ही काम नहीं आता, किसी होर दुनिया च भी काम आता। बाणी का प्रमाण सुनो, कहते हैं

साधु मित्र हन जिन्होंने ढूंढ सज्जन संत पक्या जिन्होंने पक्के हुए आत्मक जीवन दे विच प्रपक्ष साधुओं के नाल अपनी मित्रता पाई है, कहिंदे हन ए जिहड़े कच्चे हन इन्होंने तो इत्थे ही छड़ जाना है। कहिंदे हन तुहाडी रूह नूं ओह खुआर नहीं होण दिंदे, तुहाडी रूह नूं भटकण नहीं दिंदे, साधु संत दोनों जहाना दे विच तुहाडी जो है वह संभाल करते हैं। इस करके साध संगत नालों वड़ा होर कोई टंग ही नहीं है भक्ति का। इस करके होर सारिया विधियां जड़िया हैं वह साध संगत के मुकाबले दे विच कुछ नहीं हैं। प्रेम नाल गाओ।

बहुत प्यारे वचन हैं। ये शब्द इतना इतनी परफॉर्मनेस दे नाल भरिया पिया है कि असी इसनू अपनी जिंदगी अगर कमा लीए, इसनू वरत लीए, तो साडा जीवन भगत रविदास जी की तरह बदल सकता है। भगत रविदास जी कहते हैं, फिर मैं की कीता, जोई जोई जोरियो सोई सोई फट। जो भी अपने अंदर सुभा जोड़े हुए सन, सुभा पकाए हुए सन, इन्वेस्टेड हैबिट्स सन, कहिंदे उसनु मैं सारे नु सारे नु एक कचरा समझ के पाड़ दिता। जोई जोई जोरियो, असी कई दफा एक दफा किसे नाल नाराज हुन्ने हां, फिर उसनु असी अपने अंदर जोड़ लेने हां, उस नाराजगी नु फिर सारी उम्र रखते हैं। किसी ने अगर सानू कोई बुरा शब्द किसी वेले कह दिता है, वह फिर सानू सारी जिंदगी याद रहिंदा है। जो भी उस परसन नु असी देखते हाँ, उस रेफरेंस दे विचों देखते हैं, उसे रेफरेंस दे विचों देखते हैं। मेरे नाल किसी ने बुरा किया है, उसनु असी भुला नहीं सकते। कहिंदे जोई जोई जोरियो, अगर

अमृत छक छके गुरतुफे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इक हर इक हर इक

प्यार नाल सुनियो कि नहीं करदा कोई रचना बांझी रखी जाए, पर कई दफा ऐसियां चीजां बंदिश दे विच आउंदियां गवैशी विच जिसनू बिखड़े टेढ़े ढंग नाल थोड़ा जा गाया जांदा है। आम जिन्हां सजना जां भैणां नूं ताल सुर दी समझ ना होए ते कई दफा ऐसी बेरसी बेतालापन पैदा हुंदा है जिहदे नाल चीज दा समुचा रस माणिया जांदा है। सो मैनूं इस गल दी हार्दिक प्रसन्नता होएगी जे भैणां जां वीर लय सुर दे अंदर बोल सकण ते इस चीज नाल बोलण, ते नहीं तां प्यार नाल सरवण करना इस शब्द दे विचों बहुत कुछ मिलना है।

chapeau, t'es... T'as fait essayer de le tuer. Guru Maharaj dit... Longing present karte hain. Longing pesh karte hain. Ek pyaas, zarurat, ek tadap ka zikr karte hain. Aur aakte hain man loche har milan ko. Mera man परमात्मा नु मिलना लोचदा है, इसके अंदर बड़ी भारी लोचा है। जदों परमात्मा नु मिलन दी जीव के अंदर भुख लोच प्यास पैदा हो जाए, समझो उसके अंदर बाकी तमाम चीजां ले वैराग हो गया। वैराग का अर्थ के बाकी तमाम चीजों के विचों वो डिसइंटरेस्टेड हो गया। He has no more interest in worldly things। उसके अंदर एक ही प्यास है कि वो उसने जो बनाने वाला है, सारी सृष्टि में साजन वाला है, जो उसमें पानी दिंदा है, ऑक्सीजन दिंदा है, धरती दिंदा है, अनाज दिंदा है, वो कौन है? जिसने इसमें बनाया है वो कौन है? वो अपने असल हर जी माता हर जी पिता जो सपना का पिता माता है उसमें मिलना चाहता है। और उस अवस्था दे विच मन दुनिया वालों वैरागवान हो जाता है, दुनिया वालों मन जो है वो उदास हो जाता है। भाव उसमें कोई और किसी चीज की रुचि नहीं रह जाती, उसकी रुचि बदल जाती। बाबा जी आखते हैं इस अवस्था से जाके जो जिज्ञासु है उसकी रुचि बदल गई है। उस मन की अवस्था यह है कि मेरा मन एक ही प्रिया मांगे। मेरा मन जो है वो एक उस प्रिया नू अपने प्यारे नू ही मंगता है, होर किसी चीज के नाल वो सैटल नहीं हुंदा, तृप्त नहीं हुंदा। मेरा मन एक ही प्रिया मांगे। मन लोचे हर मिलन, मन जो है वो दिन रात उस अकाल प्रभु दे दीदारन लई उस दे मिलन दे लई बेचैन रहिंदा है। अते अंदर एक सवाल पैदा रहिंदा है, क्यों दर्शन पाईया, किमें उसका मैं दर्शन करां, किमें मैं उसनु मिला। प्यास इतनी गहरी हुंदी है, मैं लख विड़ते साहिबा जे बिंद बोलाईया। इसके विच ए आख्या है कि ऐ मेरे साहिब, जे मैनू एक बिंद एक पल एक छिंदे वास्ते भी तू बुला लवे, मैनू मिल पवे, मैनू मौका दे देवे, तो मैं समझांगा मैं लखां पा लें, मैं लख विड़ते साहिबा, मैं सब कुछ पा लिया, मैं लखां करोड़ां हासिल कर लिया। जे मैनू एक मोमेंट दे वास्ते भी अपना मिलन दे दवें, अपने दीदार दे दवें, अपने आप नू मिला लूं, क्योंकि मैं सब कुछ करके देख लिया है,
किसी भी चीज तृप्ति नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है, जॉय नहीं है, सब कुछ आर्टिफिशियल है, फेक है, मोमेंटरली है, अते दुख का कारण है। दुनिया का हर सुख जो है वो नाल ही नाल दुख भी दिंदा है। इस करके कहते हैं मैं चारे कुंडा पालिया, मैं हर थां ते भाव, मैं सब कुछ देख लिया है, तुद जेवड़ ना साइया, ऐसाई तेरे वर्गा कोई नहीं है। मेरे अंदर एक ख्वाहिश है, एक प्यास है, एक उमंग है, एक तमन्ना है, एक जाचना है, एक लॉन्गिंग है कि तेरे दर्शन मैनू किवें हो। शब्द का पहला हिस्सा जो है उस दे विच महाराज जी एक जिज्ञासा पेश करते हैं, अते ऐसा जिज्ञासु महापुरखां दे संतां दे पास आके बेनती करता है। उस बेनती नू आओ गाइए, दिलों गाइए।

इतना खूबसूरत जवाब देता है, कहते ने मन अर्पो। सुखनी साहब जी महाराज ने आख्या है ना, कहते हैं

खंडे खंड प्रचंड पार पूर्ण प्रेम की प्रीत तुम्हारे पार न पाए सके पद्मपति

कृपा मुहे करो। एक साखी है, सुकेत मंडी दा राजा आया, कह लगा दसम पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नो मेरे ते कृपा करो। सामने एक सिख सी जो घोड़िया की लिद हटा के तबेले चो निकलिया सी। वो कवि भी सी, 52 कविया विचों। महाराज कहन लगे राजे नू तेनू ओदे वर्गा बना दिए। राजा कंबिया, कहन लगा महाराज तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो।

महाराज कहन लगे राजन तू ए वर्गा नहीं बनना चाहता, ये तेरे वर्गा नहीं बनना चाहता है, दोनों कहते भी कृपा कर। असल दात ओदा नाम है, ये ओनू दिंदा जी ते कृपा कर दे। इस शब्द विच भी ये मंग मंगी है, ऐसी कृपा मोहे करो तेरे बख्शियां दे चरण होण ते मेरा मथा लग जाए, साध संगत दी चरण धूड़ प्राप्त होए, ऐसी मंग इस शब्द विच।

बहुत प्रसिद्ध सरल पर गंभीर प्रकृति का राग है। यह राग लोक संगीत का इना अनिखड़वा अंग बन चुका है कनेका लोक गीतां विच इस दियां सुरां गूंजदियां सुनींदियां हन। टोडी बारे प्रसिद्ध है यह गा के गवैया राज दरबारां विच बख्शां दियां झोड़ियां भर लैंदा सी। गुरबाणी विच इको दे सलाहुण दा मजमून लिया है ताकि जीवड़ा दुनियावी दरां ते ना भटकदा फिरे। कोई एक ही किस्म दियां टोडियां सुनींदियां हन जिन्हां ने भी मनुखां दे दर जां लड़ पकड़े वो दुखी पर जिन्ना प्रभु दा पल्ला पकड़िया ओहो बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच ऋषभ गंधार धैवत कोमल अते मध्यम तीबर लगदे हन। वादी सुर धैवत अते संवादी ऋषभ है। गायन समा है दिन दा दूजा पहर। इस राग विच पहला शब्द प्रस्तुत कर रहे हन भाई साहब बलबीर सिंह जी दा रागी जथा। रचना है गुरु अर्जन देव जी महाराज दी। शब्द दी तुक है रूड़ो मन हर रंगो।

उड़ो ना कागा कारे, देख मिली जय अपने राम प्यारे। राग कौड़ी दे विच उच्चारण किया होया

बहुत भागशी लोकां दी जिंदगी दे विच ही हुंदा है। असी अपनी रोज की जिंदगी सवेरे उठण तो जो साड़ी अख खुलदी है उस तो लैके रात में जो असी बिस्तर दे विच चले जाने सोने सुबह की अख खुलण तो शाम की नींद दे विच प्रवेश करन तो पहला हर रोज साड़ी जिंदगी दे विच जितने सानू एक्सपीरियंसेस होंदे हैं वो तकरीबन तकरीबन हरेक मनुख दे मोर ओर लेस समान ही हैं। असी खाने हाँ, असी पीने हाँ, फिर उस तो बाद असी अपने कारोबार दे विच प्रवेश करते हैं। कारोबार दी

जिंदगी दी तमाम गरजां दे कारण लोड़ां दे कारण एक दूसरे तो एक्सपेक्टेशंस होंदियां हन उन्हां दी बिना उते कदे सानू जो है खुशी नसीब हुंदी है कदे गमी मिलती है कदे सानू खिड़ाओ मिलता है कदे सानू डिसअपॉइंटमेंट्स जो मिलती हैं सो अजिहे एक्सपीरियंस ते हर इंसान अपनी जिंदगी दे विच

शब्द दे विच भगत कबीर जी ने जो मनुखी जिंदगी दे विच कीते होए एक खास अनुभव दा आत्मक अवस्था दे किसे खास एक ऐसे एक्सपीरियंस दा जो एक्सप्रेशन जो साडे सामने पेश कीता है इस शब्द दे विच वो बहुत ही रेयर है, वो बहुत ही कम है। अते विरलियां नूं अजिहा थ्रिलिंग, अजिहा जॉयफुल, अजिहा अनुभव जो है वो हासिल हुंदा है इस शब्द दे विच। कबीर जी एक दृष्टांत साढ़े सामने रखते हैं, पहला मैं वो दृष्टांत तुहाडे सामने रखा ताकि उस गल नूं मैं जो एलैबोरेट करना चाहना हाँ वो मैं कर सकां। शब्द आप फिर प्यार नाल सुनो, कहते हैं पंथ निहारे कामनी, कामनी कहते हैं एक स्त्री, पंथ निहारे कामनी लोचन भरी ले उसासा उरना पिजे पग ना खिसे हर दर्शन की आसा। एक मेटाफर है, एक दृष्टांत है, एक उन्होंने मिसाल दिती है साडे सामने। जिस तरह कहिंदे हन एक पत्नी जिसका पति परदेश दे विच चले गया होवे बहुत लंबे समय दे वास्ते, अते उसकी जदों वो जुदाईगी महसूस करती है, उस जुदाईगी दे विचों की करती है पंथ निहारे, उसका रस्ता देखती है, उसकी राह तकदी है, उसका इंतजार करती है। पंथ निहारे, निहारे का मतलब देखती है, पंथ निहारे कामनी वो औरत, लोचन भरी कई दफा उस विछोड़े दी जो दर्द है उस करके उस दे लोचन भरी उस दी अखां जो हैं लोचन हैं वो भी पानी दे नाल भर जांदियां, अंसुआं दे नाल भर जांदियां। ले उसासा अते अपने अंदर ही अंदर उस जो खला है जिंदगी जो कमी है उस दे कारण ले उसासा वो होके भी लेंदी है। अगे चलते हैं, उर ना पिजे उस दे हिरदे नूं उस दे दिल नूं टिकाओ नहीं आता। पता नहीं केड़े युग दियां इह गल्लां भगत कबीर जी ने साडे सामने पेश कीतियां हन। एक दृष्टांत है, अज भी जिंदगी च पत्नियां ऐसा महसूस करदियां हन जां नहीं इह मैनूं नहीं पता, लेकिन भगत कबीर जी ने इह दृष्टांत इह प्रमाण साडे सामने किसे युग दा बख्शिया है। कहिंदे हन उर ना पिजे उस दा हिरदा जो है वह खलोंदा नहीं है, और कहिंदे हन हिरदे नूं दिल नूं, दिल नूं उस दे नूं टिकाओ नहीं आंदा, तसल्ली नहीं आंदी, बेचैनी है, एक उथल पुथल है। और ना पिजे पग ना खिसे अते उस दे पैर अगा चलदे नहीं हन, भाव कोई सत्या नहीं अंदर कुछ करन दी। और ना पिजे काश अज दी दुनिया च अजिहा ही प्रेम होवे, लेकिन भगत जी ने किसे खास ही वक्त दे विच जदों अजिहे रिलेशन्स हुंदे सन उदों दी ये मिसाल दिती है। और ना पिजे पग ना खिसे पैर अगां चलदे नहीं हन अते की है हर दर्शन की आसा। इत्थे जाके उन्होंने गल कही है हर दर्शन की आसा। जेड़ा भगत हुंदा है, जेड़ा दास हुंदा है, जेड़ा गुरु का सेवक हुंदा है, उस दी अंदरली जो अवस्था ए हुंदी है। जिस तरह उस कामनी दा जो पति प्रदेश दे विच गया उस दे राह तकदी है, अखियां दे विच हंजू आंदे हन, अंदर होके लेंदी है, दिल किते खलोंदा नहीं है, कदम अगां चलदे नहीं हन, जिस तरह दी कहिंदे उस औरत दी जो मानसिक अवस्था हुंदी है जो गुरु दा दास है, जो गुरु दा भगत है, जो भक्ति अते बंदगी दे मार्ग उत्ते चलदा है, कहिंदे हन उस दे अंदर अजिहा विरह जो है वह पैदा हो जांदा है। उस दे अंदरली जो दशा अजे ही वैरागमय हो जाती है, उस दा अंदर जो है अजे ही एक लॉन्गिंग दे नाल भर जाता है। और न पिजे पग न खिसे हर दर्शन की आसा। तो मैं पहला ही अर्ज की सी कि अज दे इस कीर्तन दे विच मैं आप दे सामने एक खास किस्म दी मनुखी जीवन दे विच जो अनुभव कीती हुई अवस्था दा जिक्र करना है। असी यह देखना है कि साडी जिंदगी भी की अजिहे अनुभव दे नाल अमीर है या नहीं। Do we
we feel these kinds of experiences in life or not. ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਨੁਭਵ ਵੈਰਾਗਮਈ ਅਨੁਭਵ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਸਥਾਈ ਦੀ ਗਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਡਹੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ।

अगर आप सारे मैं पिछले की इतना भी क्या है इसमें सचमुच एक सत्संग समझते हुए इन शब्दों के नाल अपनी आत्मक अवस्था को उच्चा करने की कोशिश करिए। इन शब्दों तो असी अपनी तस्वीर देख सकते हैं। मैं आप जी के सामने अज के इस कीर्तन च एक शीशा पेश करना चाह रहा हाँ जिस शीशे दे विच असी अपने आप को देख सकी। मैं आप जी के सामने साढ़े सतगुरुआ की जो अंदरली अवस्था है उन्हां दी स्टेट ऑफ माइंड वो रख रहा हाँ ताकि सानू कुछ ना कुछ ते चोट लगे कि असी किहो जहे हाँ अते जिन्हां दे असी अपने आप नू होण दा दावा दिन्ने हाँ उन्हां दे हिरदे किहो जहे हन। आओ हुण इसे ही शब्द से जिस तरह भगत कबीर जी ने अपने अंदरली अवस्था इस दृष्टांत दे नाल पेश की है हुण मैं गुरु अर्जन देव जी महाराज के कुछ एक प्रमाण आप जी के सामने रखन लगा हाँ अते आपने देखना कि गुरु अर्जन देव जी महाराज की हार्दिक अवस्था जो है वह किस किस

0: तेरे अंदर कदे वैराग, तेरे अंदर कदे उदासी, तेरे अंदर कदे उपरामता आउंदी ही नहीं है। भाव उन्होंने कहन का यह है कि जदों अकाल पुरख वाहिगुरु का प्रेम किसी लग जाए तो उस दे अंदर सब तो पहली चीज की होंगी है, बाकी तमाम चीजों के प्रति थोड़ी रुचि घटनी शुरू हो जाती है। जगत के प्रति संसारी चीजों लिए एक उपरामता आनी शुरू हो जाती है। उस उत्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का आप जी नूं एक जो श्लोक है वह सुनाना चाहना हाँ। कहते हैं
1: बिखे नस्यो काहे रचे

अखीरली लाइन दे विच कबीर जी ने शब्द नूं कंक्लूड किया है वह कहना बहुत जरूरी है। कहिंदे हन कहे कबीर जीवन पद कारण, जीवन पद का भाव कि जीवन की असल मंजिल, असल पदवी, असल रुतबा। कबीर साहब कहते हैं ऐ इंसान अगर तू जीवन का असल रुतबा करना है, हासिल करना है तो की कर, हर की भगत करी जाए। बस अपनी जिंदगी दे विच भगती की अमीरी लाओ, भगती ना होवे तो जिंदगी बड़ी गरीब रहती है, भगती दे नाल ही साडा जो जीवन अमीर बनता है। कहते हैं

गुरुदेव बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है, एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक राजी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था कि हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती, यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतनी निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती थी, नीचे होते चले गए।

गुरु सवारी साध संगत जीओ गुरु बख्शी फतेह अर्ज कर रहे हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बेनती है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी अपार रहमत, अपार कृपा सदका साध संगत जी दी अथाह श्रद्धा पूर्ण मिलवर्तन अते संत बाबा सुच्चा सिंह जी दी उच्ची सुच्ची सोच सदका 9, 10, 11, 12 अते 13 अक्टूबर सन 1991 नूं धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी पावन पवित्र हजूरी विच प्रारंभ होया अदुत्ती गुरमत संगीत सम्मेलन, जिस विच दुनिया भर दे मन्ने परमन्ने रागी सिंघां ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच अंकित शुद्ध 31 रागां विच रची गुरबाणी दा मनोहर कीर्तन करके लखूखां संगतां दीआं असीसां प्राप्त कीतीआं अते अपना जन्म सफला कीता। अदुत्ती कीर्तन दरबार विचों रिकॉर्ड कीते 31 रागां विच 61 शब्दां दीआं 16 आडियो कैसटां दा सैट असीं पहली बार संगतां दी सेवा विच भेंट करदिआं परम आनंद महसूस कर रहे हां। इह सारा उद्यम अखंड कीर्तन दे सोमे श्री हरिमंदर साहिब अमृतसर जी दी सेवा विच बड़ी निम्रता अते अतुट श्रद्धा सहित समर्पित कीता गया। असी हां साध संगत जी दे दासरे गुरुद्वारा गुर ज्ञान प्रकाश जवद्दी कलां लुधियाणा पंजाब इंडिया। इस लड़ी दा पहला राग श्री राग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी राग तरतीब विच श्री राग नूं प्रथम स्थान प्राप्त होया है। रागन में

श्री राग पार्स बखान है। श्री राग बड़ा पुरातन मधुर अति कठिन राग है। श्री राग नू मुड़ सुरजीती दा राग भी मन्या गया है। इस राग विच ऋषभ अति धैवत कोमल लगते हैं। मध्यम तीबर अति बाकी सारे शुद्ध स्वर प्रयोग होंगे हैं। इस दा बादी रे ते संबादी पा गायन समा रात्रि दा प्रथम पहर है। ऐसे राग विच हुण सरवण करो दो शब्दां दा गायन। पहला शब्द भगत रविदास जी दा उच्चारण कीता होया है। शब्द दी आरंभ दी तुक है तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। इस राग नू गायन कर रहे हन प्रिंसिपल बलदेव सिंह जी। अते दूजा शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी दा उच्चारण कीता होया है। इस दी आरंभली तुक रंग रत्ता मेरा साहेब रव रहा भरपूर। इस शब्द दा कीर्तन कर रहे हन बीबी गीता कौर पेंटल जी। सब तो पहला शब्द प्रिंसिपल बलदेव सिंह जी दी आवाज विच जिस दी आरंभली तुक तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा।

माली ने पानी दे दे के राखी कर करके सुंदर बगीचा तैयार किया। वेख वेख फुलां नूं खुश हुंदे बगीचे वल झाती मार मार के प्रसन्न हुंदे, मेरी मेहनत सफली होई। कोलों दी इक राही लंघिया, आवाज मार के राही नूं आखन लगा, ऐ राही आ मैं तैनूं अपना बगीचा विखावां। किड्डे सुंदर फुल खिड़े होए हन मेरे बगीचे च, राही मुस्कराया, आखन लगा रात नूं आवांगा शामी आवांगा आके तेरा बगीचा वेखांगा। राही तां टुर गया पर माली गाफल हो गया, जागया नहीं सौ गया, सुता रहा जदों जाग खुली ते सारा बाग मिध्या होया। कोई ऐसा जानवर आया, कोई गऊ मज अंदर आई जेड़ी फुलां नूं मिध मिध के, किधरे वेखो अद्धे फुल खादे होए ने, कोई खुरां थले दिते होए ने, कोई फुल उधर डिगा पिया, कोई इधर पिया, सारा बाग ही पलां विच उजड़ गया। एक एक फुल वाले निगाह मार मार के रोई जांदे, ये की बन गया, ये पलां विच सारा बाग ही उजड़ गया। गोडियां विच मुंह दे के रोई जांदे, ये हो की गया, सोच सोच के हैरान हुंदे। कोलों दी जदों राही आया ते आखन लगा हुण विखा अपना बगीचा, ते राही दा हथ फड़के माली कहंदा है एथे मेरा गुलाब दे बूटे सन, एथे चंबेली सी, एथे आ फुल लगे सन। एक एक फुल दा नां लै लै के, बूटे दा नां लै लै के विखाउंदा है, पर कहंदा है हुण ते बगीचे विच कुछ भी नहीं रहा, सारा बगीचा ही उजड़ गया है। ऐसा एक पै गया, कोई काल रूप पै गया कि मेरे बगीचे नू पल्लां विच उजाड़ के रख दिता है मिंटां विच। ऐ मनुख

0: धन धन साहिब जी ग्रंथ साहिब जी महाराज आप दी पवित्र बाणी दा सत्कार करदे हां आप दी संगत वालों बेनत मैं जो रुपये दाता जी सरबत पंद्रह गुरु को सिखी दाता सुख मनुख अपने चढ़िया कला देश प्रदेश तक ने मुखरे जग न भगत सतगुरु जी हो रोज चुग दी खिमा करनी फतेह बुलाई प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
1: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

राग प्रभाती दे इस रंजक स्वरूप विच भगत कबीर जी उस खालक दी नूरानी होंद संबंधी समुची लोकाई नू उपदेश दे रहे ने। लोगा परम ना भूलह भाई, खालक खलक खलक मह खालक, पूर रहे हो सब ठाई।

विभास ते प्रभाती रागां दे सुमेल राग विभास प्रभाती दियां मधुर सुरावलियां विच भगत कबीर जी उपदेश दे रहे ने। प्रगटी जोत मिटिया अंधियारा राम रतन पाया करत बिचारा।

नौवें पातशाह साहेब श्री गुरु तेग बहादुर जी राग जैजावंती दे अंतर्गत विशे विकारां विच ग्रसे नाम विहूणे मन की दशा का बयान कर रहे हैं। रे मन कौन गत होए है तेरी, इह जग मह राम नाम सो तो नहीं सुनह कान, बिखियन स्यो अति लुभान मत नाहिन फेरी।

विषमाद नाद विषमाद वेद विषमाद जीव समाद भेद विषमाद रूप समाद रंग विषमाद रागे फिरे जन विषमाद पौन विषमाद पानी विषमाद अग्नि खेड बिडानी विषमाद धरती विषमाद खानी विषमाद साद लगे प्राणी विषमाद संजोग विषमाद वजोग